0: अलिसा, तिमीलाई थाहा छ नि है, म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर।
1: यो कुरा चाहिँ गोपिराख है।
2: Yes!

0: लन खाइ
1: खै यति करलान्दै नगाउने के गथे
2: मुहा पिरालु छ क्या
3: हे के भनम खै हे गाइदेऊ गीता।

0: ए नानी हो, कता जानी हो?
1: अनि देखेनौ र डोको नाम्रो बोकेर घाँस काट्न जान लाग्यो?
0: ए हो त नि गाँठे ममोरनी तेरी।

0: कार्पेट विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
1: ब्यास 4 मेन रोड दमौली तनहुँ।
0: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 9816161326, 9843006605, 9819113527, 65565025।